कल युग में कीर्तन प्रधाना जोगी भी कीर्तन करन लग पैने, सन्यासी भी कीर्तन करन लग पैने, साजां दियां धुनां चर्च देच भी वजन लग पईआं ने, कवाली संगीत मस्जिदां देच भी आ गया, दरगाहां देच भी आ गया, काबेआं देच भी आ गया। तो एक गल ते स्पष्ट हो गई कि गाण नाल परिपूर्ण परमात्मा खुदावन ताला दे जड़े गीत ने इनू संगीत दे ढाल के गायन करन नाल मन ते छेती असर पैंदा है और जल्दी सुकून मिलदा है। तो जिथे गुरु नानक दे कोलो ए रवाब दी धुन छिड़ी सी, गुरुद्वारियां तो उठ के अज मंदिर मस्जिद ते चर्चा तक भी पहुंची है और संगीत दे आसरे ते परिपूर्ण परमात्मा दे गीत गुण गायन करके परमात्मा नाल जुड़न दे वसीले लभ रहे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने ए ते मसाला है संगीत, भोजन नूं होर स्वादी बना देंदा है, होर रसदायक जो है बना देंदा है। मारण नाद की है, छत्ती अमृत भाव एक जाको नदर करे, उस एक दा भाव, उस एक दी भावना, उस एक दी श्रद्धा जो अंदर पैदा हुई है, मन में 36 प्रकार दे भोजन छक ले रहे। भोजन 36 प्रकार दा अक्सर मनिया जांदा है, श्रृंगार 16 प्रकार दा गिणन दे जो है आया। मन दियां हालतां विद्वान 9 मनदे ने, जिन्हों 9 रस भी कह देंदे ने, मन दे वख वख इस ढंग दियां जो है गिणतियां ने। साहिब कहिंदे 36 प्रकार दा जो खाना है, मनो में छक लिया, मनो में रस मान लिया, जिहड़ी उसकी भावना अंदर उजागर हो गई है, अंदर जो है पैदा हो गई है। इस वास्ते बाबा होर खाना खुशी खुआरे, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। मनुख जिंदा रहिंदा अगर खून चलदा रहे, और खून तां चलदा रह सकदा है अगर मुंह दे भोजन चलदा रहे, खुराक चलदी रहे। खुराक खून है, खून जिंदगी है, और खून चलदे ने तो मन चलदा है, विचार चलदे ने तो मुख गलते आ गई भोजन ते। तो साहिब इसने इंज तस्लीम कर देने कि है कुछ ऐसा भोजन जो खून दे विकार पैदा करदा है, है ऐसा कुछ भोजन जो शरीर दे रोग पैदा करदा है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। वैसे तो एक दिन का खाना भी दस सकदा है कि जो कुछ मैं खादा है शरीर दे अनुकूल है कि नहीं, मन दे अनुकूल है कि नहीं। अगर कोई शरीर शास्त्री होवे, अगर कोई अपने मन नूं पढ़न वाला होवे, ते उन्हें देखना चाहिए अज मैं खादा की है। क्योंकि खून दी गर्जिश ते खाण नाल है, विचारां दा दौर ते खाण नाल है, मन दे विकार आ गए ने, तन दे पीड़ा आ गई है, ये ते खाना दोषी है। और जे खाना दोषी है तो मनुख दोषी हो जांदा, विचार दोषी हो जांदे ने, शरीर रोगी हो जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज की यह मनोत है कि बेशतर शरीरक रोग और मानसिक विकार इन्हां दा मूल कारण है आहार। अगर कोई मनुख अपने आहार दे प्रति सुचेत नहीं है, सावधान नहीं है, तो स्पष्ट है अपने रोगां प्रति और मानसिक विकारों प्रति सुचेत नहीं है। इस वास्ते फैसला कर देता है बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ये ठीक है कि जीवन व्यापक है, वनस्पति दे च है, पशु पक्षियां दे च है, आदि मनुख प्रकृति दे हवाले सी, पहाड़ां दियां कंदरां च रहिंदा सी, रुखां तले रहिंदा सी, और प्रकृति ही जो उसनू खाण नू देवे ओही खांदा सी। इसका स्वयं का कोई चुनाव नहीं सी, क्योंकि मनुख अजे सभ्य नहीं होया सी।
प्रकृति ने जो फूल दे दी

घोड़े पाखर सोयने साखते बूझण तेरी बाट तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण धात वाजा ने जा पत्सों परगट करम तेरा मेरी जात बाबा और चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार। एक ऐसा पावन पवित्र गुरु नानक देव जी महाराज का महावाक है जिस विच जीवन नूं बुलंदियां ते किवें लै जाइए और जीवन दे विचकार रुकावटां केड़ियां केड़ियां ने इहदी पूर्ण तौर ते सूझ समझ वक्त दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कराई है। इतनी गल ते स्पष्ट है प्रथम शरीर है फिर मन है फिर आत्मा है। सारे दा सारा पशु जगत शरीरक तल ते जी रहा है लोड़ां दे तल ते जी रहा है पर मनुख लोड़ां दे नाल नाल शरीर दे नाल नाल मानसिक तल ते जी रहा है ते मन दियां अपनियां कुछ कामनावां ने मन दियां अपनियां कुछ इच्छावां ने और इन्हां कामनावां ने बहुत वड्डे पसारे नूं जन्म दिता है। इतना जीवन वड्डा ने जितना पसारा वड्डा हो जांदा है और इस नाल मानसिक तनाव वध जांदा है। इस वास्ते मनुख सिर्फ शरीरक तल ते ही रोगी नहीं मानसिक तल ते रोगी है। शरीरक तल ते ते शायद कोई कोई रोगी होवे पर मानसिक तल ते ते सतगुरु कहिंदे ने जो जो दीसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। तो प्रथम शरीर दे तल ते मनुख सावधान होवे सतगुरु देव जी महाराज खान पीण दा संजम दसते ने और साफ कहंदे ने बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ओ खाना जो वक्ती तौर ते खुशी देवे ते बाद विच विकार पैदा करे ओ खाना जो वक्ती तौर ते रस देवे पर बाद विच बेरसी नूं पैदा कर देवे और शरीर नूं रोगी कर देवे सतगुरु उस तों जो है वरजदे ने। इह गल वखरी है कि शरीर अलग अलग ने कोई वाई प्रधान शरीर है कोई कफ प्रधान शरीर है और कोई पित्त प्रधान। अपने शरीरक सुभाव नूं वेख के खाणियां प्रति जो सुचेत हो जांदा है वो शरीरक पीड़ा तो बच जांदा है मानसिक विकार तो बच जांदा है और जैसे शरीर दे खाण पीण दा मसला हल होवे एकदम पहनण दी दुनिया आरंभ हो जांदी है। पर पहनना सिर्फ प्रदर्शनी वास्ते होवे पहनना सिर्फ नुमाइश होवे पहनना अपनी बिरती नूं भी बार मुखी करे ते दूजियां दी बिरती नूं भी अपनी तरफ खिंचे ऐसा पहनना भी मानसिक विकारां नूं जन्म देंदा है। तो सतगुरु उस तों भी सानूं वरजदे ने बाबा होर पहनण खुशी खुआर जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। अगां चल के मेरे पातशाह मन दी उस अवस्था दा जिक्र करदे ने जद तन तो मनुख निश्चिंत हो जाए ते मन बड़े पुरजोर ढंग नाल मंग करन लग पैंदा है। और एही एक ऐसा शब्द है जिस दे चार रहाव ने चार ठहराव ने ए अपनी तरह दा इंज कह लो एक महान शब्द है जिस दे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार रहाव ने। चार रहावां विच भाव चार भाव सतगुरां ने साडे सामने रखे ने प्रथम शरीर
और शरीर दे खान पीन दा मसला हल होवे तो फिर पहनना, और पहनना भी ऐसा हो जाए कि अपने आप नू नुमाइश करन दा चाव पैदा होवे ते दूजियां दी बिरकती नू भड़कान दा मसला खड़ा होवे। साहिब कहिंदे नहीं, ਇਹ ਵੀ ਖੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਸੁਖੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੇ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਪੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਤਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪੰਨ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਉਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ। ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡਪਣਾ ਧਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਪਣਾ ਸੰਪਦਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਪਣਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਤਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤੀ ਤਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋਰੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਭਰਮੰਤਾ। ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅਧਿਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਰਮ ਨੇ ਔਰ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਧਾਵਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਭਟਕਣ ਵਿਚ ਭੁੱਲਣਾ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬੀ ਮੁਫਲਸੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਜਹਿ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਥੇ ਤਾਂ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਹੈ ਉਥੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਜੋ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰਨੇ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਸੰਪੰਨ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰਨੇ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰਨੇ ਉਥੇ ਉਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ। ਗਰੀਬ ਅਜੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਧਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਧਨ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤਨ ਤੇ ਚੀਥੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਸੰਪੰਨ ਸੀ ਔਰ ਇਰਾਨੀਆਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਆਖਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਵੀਰ ਹੋਣ, ਆਖਿਰ ਰਾਜ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਨ,
इन्होंने भी अपने मानसिक मसले प्रभु चिंतन नाल हल कीते, आत्म अभ्यास नाल जो है हल कीते। करीबन करीबन इस देश दे राज घरानियां दे चों धर्म दी सुगंध फैली, धनाढ़ मनुख प्रभु दे मार्ग ते चले, और जब धनाढ़ चल पैन सताधारी चल पैन तो दूसरा वर्ग उन्हां दे पिछे चल पैंदा है। स्वभाविक है, अक्सर छोटा वड्डे दी नकल करता है, निर्धन धनवान दी रीस करता है। तो जो थोड़े जिया भी तलते पछड़े सन दरम्याने सन उन्होंने राजघरानिया दे ए जो राजकुमार सन इन्हां दी नकल की थी, राजिया दी नकल की थी, राजे जोगी बन रहे ने, राजकुमार संत बन रहे ने। तो इस देश दे ऐसी हवा चली घर घर दे देवी, घर घर दे देवता, गली गली दे संत, और अज तक वो पुरानी हवा दे कुछ झोंके मौजूद ने कि सारी दुनिया च अज भी कहंदे ने हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है, हिंदुस्तान देवी देवतावां दा देश है, हिंदुस्तान गुरु पीर पैगंबरां दा देश है, जोगियां दा देश है, आत्म ज्ञानियां दा देश है। पर ए आत्म ज्ञानियां दा देश सी अज नहीं, ए ऋषि मुनियां दा घराना सी अज नहीं। संपन्न लोगां ने अपना पूरा समा अपनी पूरी शक्ति आत्म अभ्यास दे खर्च की थी, तो सहजे सहजे की होया धन दी फिक्र ना की थी, संपदा दी फिक्र ना की थी। संत पैदा होंदे गए, ऋषि मुनि पैदा होंदे गए, अवतार पीर पैगंबर पैदा होंदे गए, तो धन संपदा दी ते फिक्र ना की थी, मुफलसी भी पैदा होंदी गई, और मुफलसी चरम सीमा ते पहुंच गई। और अज असी देखदे आं कि हिंदुस्तान अज उन्हां देशां दी तरफ निगाह करदा है जिथे संपन्नता है, ते जिथे संपन्नता आ गई है वो आत्म अभ्यास लई हिंदुस्तान दे दरवाजे खटखटा रहे ने, वो योगियां दे आश्रम लभ रहे ने, वो आत्म अभ्यास दे केंद्र लभ रहे ने। संपन्न हो गया अमेरिका, योगी शब्द दी उत्थे महिमा वध गई है, योग दी महानता वध गई है, आत्म अभ्यास दी उमंग ते तरंग वध गई है, लेकिन धन संपदा दी तरंग ते उमंग हिंदुस्तान दे च वध गई है। अज धन दी खातर इस देश दे धर्म नू छोड़िया जा सकदा है, पर उस देश दे च ऐसा है कि धर्म दी खातर धन नू छोड़िया जा सकदा है। संपन्न घरानियां दे बच्चे हिपी बन गए, छोड़ गए सारे ऐशो आराम नू, हर तरह दे सुख नो, और उन्होंने बुलंद बांग कह दिता आत्मक चैन चाहिदी है, सुकून चाहिदा है, शांति चाहिदी है, प्रभु चाहिदा है, आत्म प्रकाश चाहिदा है। तो खैर जैसे जैसे शरीर दा मसला हल होवे मन बड़े भयंकर रूप दे सामने आउंदा है, और शरीर पहले इदा मसला पहले हल करना पैंदा है, और इदा मसला है खाना पीना पहनना। पर ए संजम दे च ना होवे तो खाना पीना भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा, ए पहनना अगर संजम दे च ना होवे मर्यादा दे च ना होवे तो ए भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा। और तन दियां सारियां लोड़ां पूरियां हो जान ते मन जद बड़े भयंकर रूप दे सामने आवे तो हुण इस मन दी वास्तविक लोड़ की है। करीबन करीबन दुनिया दे अजोके सियाने मनुखा ने ऐसा समझ लिया मनोरंजन मन दी लोड़ है, नाटक चेटक तरह तरह दे रंग तमाशे रंगीनिया, इस तरह दे मनोरंजन दे साधन संपन्न घरानिया दे नवे तो नवे पैदा हो रहे ने, लेकिन मन दी एक अपनी एक अवस्था है, जिस चीज नू एक दफा वेख लवे ओनू पुराना कर देंदा है, ते पुराने दी मन परिक्रमा नहीं करदा, मन अग्गे जांदा है, मन गतिमान है, इदी गति बड़ी तीक्ष्ण है, और ए रुकदा नहीं, ए लंघ जांदा है, और लंघ के हर चीज नू पुराना कर देंदा है, हर वस्तु नू पुराना कर देंदा है,
रंग पुराने हो जाते हैं, रूप पुराने हो जाते हैं, महफिलां पुरानियां हो जांदियां ने, तस्वीरां पुरानियां हो जांदियां ने, कहानियां पुरानियां हो जांदियां ने, संगीत दियां धुनां पुरानियां हो जांदियां ने, माहौल पुराना हो जांदा है। अज देखदे हां संपन्न घर जो है देशां विच कोई वध तो वध दो साल ही मकान विच रहिंदा है, तीजे साल मकान बदल देंदा है। नौबत इत्थे तक आ गई, परिवार बदलने ने, पति बदलना है, पत्नी बदलनी है, पर हुण कौन दसे? ए जो मनोरंजन है ए मन दी मंग नहीं, ए ते इस तरह है जैसे रोंदे हुए बच्चे नु छणकणा दे के वक्ती तौर ते बुलाया जा सकदा है, पर उते दूध लई रो रहा है, उते मां लई रो रहा है। वक्ती तौर ते ए छणकणा दे के बुलाया जा सकदा है, परचाया जा सकदा है, लेकिन फिर भी उसने छणकणा सुट देना है। हथ मां दी तरफ पसारने ने, दुध दी मंग करनी है। हू बहु देखदे पया संपन्न घरानिया दे लोग इना छणकणिया ने सुट रहे ने, और कहने नहीं अस्थाई सुकून चाहिदा है, मसनोई नहीं, दायमी आनंद चाहिदा है, अस्थाई आनंद चाहिदा है, अस्थाई खेड़ा चाहिदा है। तो ओ जड़ा अस्थाई खेड़ा है, ओ ते जो अस्थाई है, जो टिकिया होया है, जो दायमी है, जो हमेशा है, उस तो ही प्राप्त हो सकता है, और ओ ते केवल परमात्मा है, ओ ते केवल ईश्वर है, उस तो ही लग सकता है। तो मनोरंजन दे जेड़े जेड़े साधन उस दौर दे विकसित होए सन, सतगुरुदेव जी महाराज उसका जिक्र करते ने। सुंदर घोड़ा होवे, सोने दी काठी होवे, लगाम भी जर्रीदार होवे, और कृपान तलवार गात्रे वाली पहनी होवे, तीर कोल होवन, पत्था होवे, और तरह तरह दियां खुशबुआं होवन, और इस सब कुछ ला के घोड़े ते असवार होके निकलना एक मनोरंजन सी, एक मन दी लोड़ सी, नेजेबाजी, एक खेड़ा, इस तरह दे मनोरंजन वक्ती तौर ते मन दा बैलावा सी उस दौर दे विकसित होए सन। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने नहीं, मन दी ए लोड़ नहीं, और इस लोड़ नू किवें पूरा करना है? धन गुरु नानक देव जी महाराज दसदे ने, घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट। हे परमात्मा, जो मैं तेरा रस्ता जान लिया है, जो मैं तेरे रस्ते नू समझ लिया है, मानो ए मैनू घोड़े की प्राप्ति हो गई है, और ऐसा घोड़ा जिदे ते जतसत दी काठी पई हुई है, सोने दी काठी पई हुई है। कहिंदे ने ए कोई लाजमी नहीं कि मनुख नू अपने घर दे ही रस्ते दा पता होवे, जो इट्टा ते पत्थरां दा बने होया मकान है और उस दे च आ गए। अगर यही उसका घर है तो एक दिन इसे ही घर चो चार मनुख चुक के लै जांदे ने, और काडो काडो होई, सतगुरु दी बाणी कहिंदी कड्डो कड्डो। तो एक गल स्पष्ट हो गई, इत्थे घर घर नहीं सी, सरां सी, इत्थे ते सी प्राउणे सी, मेहमान, घर ते कोई होर है। बाबा फरीद उसका जिक्र करदे ने, गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवणा मरनो ना डरियाओ, तन दा घर शमशान है, मन दा घर भगवान है, तन दा घर कब्र है, मन दा घर खुदा है। तो बाबा फरीद कहने घर ते आवाजा पे मारदा है, ऐ तन कब्र आवाजा पे मारदा है, कब्र तेनू बुला रही है, गोर निमाणी सड करे, गोर कब्र नू कहंदे ने, गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवणा मरनो ना डरिया, मौत दा भय दूर कर, ऐ तन तेरा घर शमशान ही है, ऐ तन तेरा घर कबरी है, पर मन तेरा घर खुदा है, तेरा घर शमशान नहीं है, तेरा घर भगवान है, अपने घर दी चिंता कर, और उस घर दे रस्ते दा नहीं पता। और असी देखदे हां सारी जिंदगी
ਲੋਕ ਕਈ ਦਫਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਤੇ ਮੇ ਕਟ ਗਈ, ਕੁਛ ਗੁਨਾਹੋਂ ਮੇ ਕਟ ਗਈ, ਰੋਤੇ ਮੇ ਕਟ ਗਈ, ਕੁਛ ਆਹੋਂ ਮੇ ਕਟ ਗਈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੇ ਚਲਨੇ ਵਾਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ

सरकारी रस्ते बहुत वड्डे महान और खूबसूरत रस्ते इस्लाम ईसाइत यहूदी पारसी। पर कई दफा मनुख की अपनी आदत आंदी है विंगे टेढ़े रस्ते ते चलना। कदी कदी शाहराह ते चलन वाले उकता जांदे ने मंजिल नू दूर समझ के, तो विंगा टेढ़ा चलन लग पैंदे ने और विंगा टेढ़ा चल के भटक जांदे ने और कदमां दे निशान ते बन जांदे ने उनां दे। उनां दे कदमां दे निशानां दे उत्ते दुनिया होर चलन लग पैंदी है और इस तरह विंगे टेढ़े रस्ते बन जांदे ने। ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਚ ਹੀ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਚ ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਚ ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਜੈਨ ਮਤ ਬੌਧ ਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਚ ਬਣੇ। ਨਿਕਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਢੰਗੀ ਚਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਟਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਟਕਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ और उन्हां ही निशानियां नूं कईआं ने मार्ग समझ के चलना शुरू कीता, तो भटके हुए रस्तियां दे ते चलण वाले भटक गए। शाहरा अज भी असीं देखदे आं, उन्हां ते कोई बहुत भीड़ नहीं है। बकौले भगत कबीर, जह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। जिस रस्ते ते चतर चलाक मनुख चल पे बड़ी भीड़ चल पई। तार्किक बंदा तर्क करन वाला जैसे रस्ते च औगढ़ घाटी आई पहाड़ आया, उन्हें किनारा कशी की थी और किनारा कशी कर दिया ही भटक गया। और ए पहाड़ जिन्होंने अबूर नहीं करना सी उन्हां नूं ये भटकन चंगी लगी, तो उसके पिछे चलन वाले भी भटके और इस तरह दे भटकन वालियां दे करके चलन करके रस्ते बने। ये भटके हुए रस्ते करीबन करीबन सारी दुनिया दे जो है मौजूद ने, जिन्हां दे उते चल के मनुख प्रभु तक ते नहीं पहुंचता, भगवान तक ते नहीं पहुंचता, पर हां रस्तियां दे च भटक के रह जांदा है। और ए साफ दिखाई देंदा है, इस वास्ते एक आलम नूं कहना पिया, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जिथे रास्ता कठिन दिखाई देवे मनुख उथे रास्ता बदलने दी जो है कोशिश करता है, ते प्रभु दा मार्ग मैदानी रस्ता नहीं है, पहाड़ी रस्ता है। एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर, इसे नूं रविदास कहंदे ने, घट औघट डूंगर घना एक निर्गुण बैल हमार, रमैये से एक बेनती मेरी पूंजी राख मौड़ा। औघट घाट उसनूं कहंदे ने जिस दे ते चढ़ना बहुत कठिन होवे, जिस तो लंघना बहुत कठिन होवे और चढ़ाइया ते दम फुल जाए। इस तरह का ही परिपूर्ण परमात्मा का मार्ग है, क्योंकि सुरत नूं बुलंदियां ते लै जाना है, उचाइया ते लै जाना है। इन्हां उचाइया तो जो भी घबरांदे ने रस्ता बदलदे ने, और पहली दफा जो रस्ता बदलदा है वह भटकिया वाला इंसान उहदे कदमां दे निशान पक्के रस्ते बना देंदे ने, और उस एक दे भटकन करके बड़ी दुनिया भटकदी है। और इस तरह की भटकन करीबन करीबन सारे जगत दे जो है मौजूद है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, यही मेरी घोड़े दी असवारी है, यही सोने दी काठी है, हे प्रभु जिड़ा मैं तेरे रस्ते नु जान लिया, तेरे मार्ग नु जान लिया। घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट, मैं जान लिया तेरा रस्ता की है। उसका रस्ता की है, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, तेरा नाम जपना ही तेरे राह ते चलना है, तेरे मार्ग ते चलना है, बाकी सब भटकना है। नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिंगार, नानक के घर केवल नाम। सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने, साडे घर दे ते केवल नाम दा ही जप है और कुछ भी नहीं, और यही एक मार्ग है, यही एक सही मार्ग है, बाकी सारी दी सारी जो है भटकना है। उदे रस्ते नु बुझना की है, उदे नाम नु जपना, और नाम जपन दे च पूरा भरोसा होना कि परमात्मा तक पहुंचने दा यही मार्ग है, यही रस्ता है। तो साहिब कहंदे ने, जिहड़ा तेरे रस्ते नु जान लिया, तेरे वाट नु समझ लिया, बस यही साडे वास्ते घोड़िया दी असवारी है। घोड़े पाखर सोयने साखर

0: बूझण तेरी वाट, तरकस तीर कमान सांग तेग मन गुण धात। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे अनंत गुणा नु जो धारण कर लिया है, एही साडे कोल भत्था है, उस दे च तीर ने, एही साडे कोल कमान है, और एही तेग बंद जिस दे च तलवार रखी दी है, उनु कहंदे ने तेग बंद गात्रा। एही साडे कोल ओ गात्रा है, और एही साडे कोल तलवार है, केड़ा जो तेरे गुण साडे कोल ने। ए जो ज्ञान आ गया, ए जो शील आ गया, ए जो संजम आ गया, ए जो प्रेम आ गया, ए जो समदृष्टि आ गई है, ए जो हिरदा निर्वैर हो गया, निर्भय हो गया, यही ते साडे शस्त्र ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी इसका बड़े सुंदर ढंग नाल जिक्र करते ने। आम कहा जाता है अवतारी पुरुषां कोल कुछ ना कुछ शस्त्र रहे ने। मुहम्मद साहब दे हथ दे तलवार सी। अपने देश नूं देखिए, श्री राम दे कोल धनुषबाण सी। द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण जी कोल सुदर्शन चक्र सी। किसे तारकक ने गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कह दिता, तुसी पंजवें गुरु नानक दी गद्दी दे वारस कलयुग दे अवतारी पुरुष, थोड़े कोल कोई शस्त्र नहीं है। तो महाराज कहण लगे, है वेखो, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन छारी, इस आगे टिके न को विकारी, गुरु पूरे ए गल सारी। साडे कोल गदा है गरीबी दी, विनिमरता दी, निर्माणता दी। साडे कोल खंडा भी है दुधारी, केड़ा जो सारिया दे चरणा दी खाक बन गए, हर एक दे पैरां दे थल्ले हो गए। सानू किसे दे सिर दे उपर बैठण दा शौक नहीं, सानू ते कदमां दे बैठण दा शौक है, सानू ते चरणा दे थल्ले बैठण दा शौक है। चोटी दे धार्मिक मनुख दी चाहत आउंदी है सारिया दे कदमां दे थल्ले बैठना है। चोटी दे राजनीतिक दी एह चाहत आउंदी है कि सारिया दे सिर ते बैठना है। राजनीति सिर ते बैठना है, धर्म नीति कदमां दे जो है बैठना है। तो महाराज कहंदे ने, इह जो सारे गुण तेरे प्राप्त हो गए ने, इह साडे कोल शस्त्र ने। और गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, विनम्रता साडे कोल गदा है, सारिया दे चरणा दी जो खाक बन गए इस साडे कोल खंडा है। तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण धात, वाजा नेजा पत स्यों प्रगट, करम तेरा मेरी जात। साडी इज्जत साडी मान मर्यादा साडी जात साडी पात एक ही है तेरी बख्शिश। ए जो तेरी रहमत हो गई है, ए जो तेरी बख्शिश है, तेरी बख्शिश ही साडी जात है, तेरी बख्शिश ही साडी इज्जत है, तेरी बख्शिश ही साडी मान मर्यादा है। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, जित चढ़िए तन पीड़िए, मन में चले विकार, होर असवारियां होर मनोरंजन दे साधन। साहिब कहंदे ने, हे सियाणे मनुख, सब खुआरियां नूं जन्म देंदे ने, सब दुख संताप नूं जो है जन्म देंदे ने, मन विकारी हो जांदा है, तन रोगी हो जांदा है। ऐसे मनोरंजना नूं इक पासे करना है, ऐसियां असवारियां नूं इक पासे करना है। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, जित चढ़िए तन पीड़िए, मन में चले विकार।
1: घर मंदर खुशी नाम की, नदर तेरी परवार, हुक्म सोई तुद भावसी, होर आखण बहुत अपारे, नानक सच्चा पात साओ, पूछ न सकरे बिचारे। बाबा होर सोना खुशी खुआरे, जित सुत

गोविंद सिंह जी महाराज ने जो है चलाई, लेकिन जदों आपने प्रथा तैयार की थी तो देखना भी चाहिया कि वाकई ये हुण सिंह अगे सिंह सजा सकनगे, अमृत छका सकनगे। तो जैसे एक उस्ताद बच्चियां नूं पढ़ाउण लई खुद पढ़दा है, पहले खुद पहाड़े पढ़दा है, नाल बच्चियां नूं पढ़ाई जांदा है, फिर ऐसा है बच्चियां नूं कहिंदा है हुण तुसीं सुनाओ मैं सुनना है। पहले आप वक्ता हुंदा है, बच्चे श्रोता हुंदे ने, फिर बच्चे वक्ता बनदे ने, उस्ताद श्रोता बनदा है, ये देखण लई कि वाकई बच्चा निपुण हो गया। छकाया पहले अमृतमयी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अमृत, और इस तरह पंज प्यारे तैयार की थे, फिर देखना चाहिया वाकई ये प्यार नाल भर गए ने, ये महान हो गए ने, और जो कार्य मैं चाहना इसनु ये कर सकनगे। तो आखिया हुण मैनू अमृत छकाओ, तुसी मैनू सीस भेट कीता सी, मैं सरबंस भेट करांगा, मैं सब कुछ भेट करांगा। मोह ग्रह में मन ते तन ते धन लो सिर है, सब ही इन ही को मेरे घर विच मन करके तन करके धन करके जो कुछ भी है सब कुछ थोड़ा, सब कुछ थोड़ा। और जद पंजा ने अमृत छकाया है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी मंग बड़े सुंदर बोल ने सर्वलोक ग्रंथ दे, सतगुर इन्हां पंजा कोल अमृत दी दात मंगदे ने। पंजा नूं साफ कहिंदे ने, सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले, सिख पंचो में मेरो वासा, पूरन करो धरो जय आसा। इन्हां पंजां विच मेरी झलक है, ये पंजां दा स्वरूप मेरा ही स्वरूप है, इन्हां विच ते मेरे विच कोई भेद नहीं रहा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इन्हां पंजां कोल अमृत दी दात मंगदे ने, अब अमृत छकाओ जैसे तुम लीन हो। जिस तरह ये अमृत लेने ने गुरु नानक पासों प्राप्त किया से, इस तरह मैं थोड़े कोलों प्राप्त करना है। और वाकई जद पंजा ने छकाया सतगुर प्रसन्न होए, हां तुसी संपन्न हो गए, वाकई तैयार हो गए, और तुसी सिखी दा सही प्रचार कर सकोगे। वाकई जो गुरु नू प्यारे ने, ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे रोम रोम दे चे, ओही अमृत छका सकदे ने, और ओही विधि पूर्वक गुरु नाल जो है जोड़ सकदे ने। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी जिस ते बख्शिश है, प्यार नाल भरिया होया हिरदा है, वो गुरु दा प्यारा है। अमृत छक के उदी दृष्टि अमृतमयी हो जांदी है, उसदे बोल अमृतमयी हो जांदे ने, उसदा जीवन अमृतमयी हो जांदा है, क्योंकि अमृत छकदे हां उसनों रहत बहत धारण करनी पैंदी है। उस रहत दी जो व्याख्या है वो इस प्रकार है, रहणी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब

다른 걸 원칭지 말아이다. 혹은 렛 베아리 모지코 식 베아라나 दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जे उस को रहनी हो गए। रहनी दो तरह की, मानसिक ते शरीरक। मानसिक रहनी है बाणी दा पाठ जपजी।

जाप साहब, सवैये, चौपाई, अनंत साहब और जितनी बाणी पढ़ सके, मूल मंत्र दा जप एक ओंकार तो लेके गुरु प्रसाद तक वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र दा जप दो वक्त 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा या जितना उसको समय, ये मानसिक रहत है। तन दुते पंच ककार ये शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ये सिख बने तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने, क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी। धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख, तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख। रहत नामे इस तरह के बोलने, ज्यो काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो। जिवें कोई खोते नु इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दिते चंदन इत्यादिक लावे, ज्यों काहू ते गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो, तैं की करता की शोभा नाही हासी होय होत जग माही। अगर इस तरह करके कोई खोते नु बाजार विच ले आवे, लोकी उसनु वड्याण नहीं लगे बल्कि हसन गए उसते, भई लै खोते नु इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुलां दी माला पवा के लैके आ गया। तैं की कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही। ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है, अगां फरमान कर देने, तिम कुरतियन केस रखाए कहो कैसे ओ शोभा पाए। इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने, मानो खोते नु इशनान कराया गया, फुलां दी माला पवाई गई है, चंदन आदक लाया गया, बस खोते ही रखोता है। सिर्फ केस ने ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत। भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर प्रमाण, निशाने सिखी ई पंज हरफ का, जिथे हिरदे दी बनावट बनेगी बाणी नाल, मूल मंत्र दे जप नाल, गुरमंत्र दे जप नाल, उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा इना पंज ककारा नाल। कक्का के

वैश्याले ने क्लब थिएटर ने इना दी रौनक रात दी है, रात दी तारीकी दी है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी ने सारे जीवन नु मंडिया है और आप कहंदे ने कुछ तारीक मई है कुछ प्रकाश मई है, कुछ प्रकाश दी ओर जा रहे है कुछ अंधकार दी ओर जा रहे है। कोई प्रकाश दा प्रेमी है कोई अंधकार दा प्रेमी है, ऐसा सिर्फ मनुखी दुनिया च ही नहीं पशु पंखियां दे च भी है। बहुत सारी बनस्पति है रात नु खिड़दी है, दिन दे उजाले विच सूरज दियां किरणां विच मुरझाई रहिंदी है कुमलाई रहिंदी है। रात की रानी रात का राजा हिमालय दे बेशतर फुल और इधर आसाम दियां पहाड़ियां ते बहुत सारे फुल रात नु खिड़दे ने और दुनिया उन्हां फुल्लां नु वेखण वास्ते जांदी है जो रात दी तारीकी विच खिड़दे ने और दिन दे उजाले विच कुमला के झड़ जांदे ने। पर फुल ओ भी ने जो सवेर होंदिया ही खिड़दे ने और पूर्ण उजाला होंदिया पूर्ण जोबन ते आउंदे ने। दिन नाल संबंध है, प्रकाश नाल संबंध है। तो बनस्पति करीबन करीबन ये दो हिस्सों दे वंडी हुई है, कुछ प्रकाश नाल खिड़दी है कुछ अंधकार नाल खिड़दी है। अगां चलिए पशुआं दा जगत देखिए पंछियां दा जगत देखिए, उल्लू दी जिंदगी रात दी है, चमगादड़ दी उड़ारी रात दी है, बेशतर मच्छर इना दी जिंदगी रात दी है, बीमारी दे कीटाणु इना दा जीवन रात दा है। रात नू प्रसन्न होंदे ने, रात नू उड़ारियां लांदे ने। और अक्सर जिहड़े पशु पक्षी रात नाल अपना संबंध जोड़दे ने देखण दे चाया हिंसक ने, मच्छर जीव जंतुओं दा खून पींदे ने, बेशतर दरिंदे रात नू अपनी शिकार ते जो है चलदे ने, सप रात नू खुड़ दे चों निकल के भ्रमण करदा है, ठूमे रात नू ही भ्रमण करदे ने और दरिंदे रात नू ही जानवरां ते हमला करके उन्हां नू चीरदे ने फाड़दे ने। लेकिन ऐसा भी है कुछ पशु जगत पंछी पो फुटदे आ उठदे ने और दिन भर अपनी चर्या विच लीन होके जीवन नू प्रकाश विच बतीत करदे ने, सब कुछ प्रकाश दे जो है करके प्रसन्न होंदे ने खुश होंदे ने। चिड़ी चवगी पो फुटी वगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग। इधर पो फुटी इधर चिड़ी ने चे चहाना शुरू कीता, इधर पो फुटी इधर संत दे मन ने भी चे चहाना शुरू कीता, इधर चिड़िया ने संगीत छेड़िया इधर संत ने वाहिगुरु दी धुनी छेड़ी, इधर चिड़ी ब्रह्म चिंतन दे चलीन होई रोज दी किरिया दे चलीन होई, इधर संत परम आनंद समाधि दे चलीन होया और परम आनंद माणदा होया प्रभु दी प्रसन्नता दा पात्र बनिया। अमृत वेले दी सवेर नाल जिन्हां दा जीवन आरंभ होंदा है मानो सवेर दे उजाले दे प्रेमी ने, उजाले दे जो है पुजारी ने, उजारे नू सजदा करदे ने परिक्रमा करदे ने और झुके रहिंदे ने उजाले दे अगों प्रकाश दे अगों। तो बेशतर पशु ने पक्षी ने जो दिन नाल अपना संबंध जोड़दे ने, जिथे पशु जगत कीड़े मकोड़ियां दा जगत पंछियां दा जगत इस तरह वंडिया होया है, मनुखी दुनिया भी वंडी हुई है। जिहड़े जीवन प्रकाशमई ने प्रकाश नाल प्रेम करदे ने ए अक्सर सवेरे ही खिड़दे ने और सवेर इन्हां नू खेड़ा देंदी है। पर जिहड़े जीवन तारीकमई ने पूर्वले संस्कारां करके ए रात नू ही खिड़दे ने, दिन नू कुमलाए रहिंदे ने मुरझाए रहिंदे ने, ए रात नू ही खिड़दे ने, रात इन्हां नू खेड़ा देंदी है, रात इन्हां नू हुलास देंदी है। और इस तरह दे लोगां ने क्लब थिएटर जुए खाने वैश्याले ते शराबखानियां नू जन्म दित्ता है। ए लोग ही इन्हां दी रौनक ने और ए रौनक रात नू बनदी है। सारा जीवन

क्या खादा क्या पहनदा होए जामण नाही सच्चा सोए क्या मेवा क्यों क्या गुड़ मिठा क्या मैदा क्या मांस क्या कपड़ क्या से सुखाली कीजे भोग बिलास क्या नश्क लश्कर क्या नेब खवासी आवे मैली वास पर एक गल रखी कह दो बादशाह नू नानक सच्चे नाम बिन सबे तोल बिन सतगुरु इथे आप भी साहब ऊपर इस बीमारी ने हल्ला कीता है कुछ विद्वान ता ए भी मानदे ने भाई गुरदास दूजा इन्हां दे माता कोल ने सतगुरु अज अपने बिस्तर ते पए ने किन्ने दिन हो गई उस भूकी ने दबिया होया है ते जदो नेत्र खोलदे ने केवल प्यारे दी याद विच ते अज कहिंदे ने नेत्र खोले ने बोले ने माता कोल ते पुछदी है पुत्र अजे ता उम्र बिलकुल छोटी है ते अगो साहब कहिंदे ने मां ए ना देख उम्र छोटी है बस तू ए देख के गुरु नानक दी कृपा नाल उस मालिक दे चरणा नाल मेरी बण आई है उम्र दी गल नहीं देख ओदे नाल बण आई है सह फिर उस भूकी विच पै गए ने कहिंदे ने सतगुरु ने फिर जदो नेत्र खोले ते सिख संगत खलोती सी उस वक्त सिखां दे नेत्रां विच नीर सी ते हथ जोड़ के पुछया सी दाता ऐस संगत नू किस दे लड़ ला के चले हो ते कवि संतोख सिंह कहिंदे ने नारियल मंगाया पांच पैसे मंगाए थाल विच नारियल रखया है ते मेरे गुरु हर कृष्ण साहब उठ नहीं सकदे अपने सज्जे हाथ नाल नारियल दियां तीन परिक्रमा कीतियां ते जड़े अंतले शब्द कहे सिखां पुछया हुण किदे कुल जोते ते उत्तर सी बाबा बसे ग्राम बकाले बाबा बकाला शब्द नहीं वरत्या बाबा शब्द वख वरत्या है बकाला वख वरत्या है कहन लगे बाबा बसे ग्राम बकाले बन गुर संगत सकल संभाले साडे बाबा जी बकाले दी धरती ते रहिंदे ने अज तो बाद गुरु नानक दी जोत ते ओ मालिक ने ते सिख संगत दी संभाल ओ करनगे तन गुरु हर कृष्ण साहब ने जिदे हाथ गुरगद्दी वाला नारियल भेजना सी ओदा नाम सी प्यारियो भाई दरगाह मल ओ आया दिल्ली तो ने तुरने तन गुरु तेग बहादुर जी बाबे बकाले दी धरती ते विराजमान ने जदो ए समझ पै गई के बाबा बसे ग्राम बकाले तीर मल कोल गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप है करतारपुर तो दौड़िया है इन्हे आके बाबे बकाले शब्द बकाला सी उस वक्त पर अज तो बाद बाबा बकाला बन गया इन्हे अपने मसंदा दा जाल पसार दिता है गद्दी ला के बैठ गया हुण संगत जेड़ी है ओ पपीए दी तरह प्यासी है भाल कर दी है गुरु नानक दी जोत किथे वे संगत बेबोले जिवे मच्छी पानी तो बिना तड़पदी है पर गुरु तेग बहादुर जी ता एकांत विच बैठे ने कदी रात नू निकलना है नहीं ता चुप करके सारा दिन टिके रहना है साध संगत इधर 22 मंजियां सिख विद्वाना ने लिखिया ने लग गईया ने थां थां ते अपने आप नू गुरु दर्शन लग पए ने असी गुरु नानक दी जोत आ ते जदो माता नानकी तक दीए सिख संगत बेबले पूरा गुरु दिसदा नहीं उदास हुंदे ने नेत्रां विच नीर भर के वापस आ जांदे ने ते मां कहिंदी है पुत्र तेरे कोल गुरु जोत है मैनू पता तेरे पिता जी बचन कह के गए ने अज ओ बचन पूरा होण लगा है तुसी बाहर प्रगट क्यों नहीं हुंदे गुरु तेग बहादुर जी खमोश ने उस वक्त माता नानकी जी ने एक पत्रिका भेजी है गोइंदवाल दी धरती से गोइंदवाल दी धरती ते गुरु अमरदास जी दी अंश विचों एक बुजुर्ग ने जिन्हां दा नाम है भाई द्वारका दास जी उन्हां नूं कह भाई द्वारका दास आओ सिख संगत नूं कोई थां नहीं दिसदी पई गुरु नूं प्रगट कौन करेगा जे सिख ना आए दूजी पत्रिका भेजीए भाई गड़िए नूं अमृतसर दा सरदालु सिख है गुरु अर्जन साहिब दे वेले दा भाई गड़िया जी आओ अज गुरु नूं प्रगट करना ते सिखां ने करना है भाई द्वारका दास गोइंदवाल तो आ गए ने भाई गड़िया जी अमृतसर तो आ गए ने ते उधरों भाई दरगाह मल दिल्ली तो तुरिया है के मेरे सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी लई ओ निशान लै के जेड़ा गुरु हर कृष्ण साहिब ने दिता बाबे बकाले दी धरती ते इन्नी देर नू मक्खन शाह लबाणे दी एक घटना जेड़ी है उहदे नाल बड़ी संबंधत है ए मुगल फौजां दी रस धोण दा काम करदा सी बड़ा तकड़ा व्यापारी सी भाई मक्खन शाह दा बेड़ा फस गया दलदल विच कुछ कहिंदे ने डुबन लगा है ते जदों सारे